0: चिकन गुनिया बो कैसा बेलाई किरमा सिंचा वायरस गनां थाम्पुई वारजाकमा बाय मेलेरिया फाइलेरिया डेंगू ताय येलु फेबार बेमारक मानजाकमा नुकजागो अमरकनो कारीबो चिकन गुनिया बेरामखा बेलाई किरमा सिंचाको अ बेराम नुकजाकमानि कतालिया 1955 बिसियो चिकन गुनिया बेराम पुइला नुकजागो फियाबा हायुं गनांगै अ बेराम पिरजागया खनि बागै ताबुकबो गोबां बरकनो चिकन गुनियानि मुं खोनायाखो आफ्रिकावनो चिकन गुनिया पुइला मानजाकमा नुकजागो उलो मेलेसिया मरिशास ताय गुबुन हाखतो रगो पिरजागै गोबांमा बरक थैखा लाय थांनाय बिसियो चिकन गुनिया मानजागै मरिशास खरक सायथाम बरक थैखा चिनि भारत हाक्तरनि तामिलनाडु मुम्बाइ अन्ध्र प्रदेश राजस्थान रग ओ बेराम मानजाकमा नुकजागो त्रिपुरा हास्तेव खे ताबुक ब मानजाकमा रगले नुकजागियाख फियाबा त्रिपुरा हास्तेव थाम्पुई वारजाकमा बाय गोबांमा बेराम रग मानजाकमा नुगुय दङ ताय ओ हास्तेव ब चिकुनगुनिया बेरामनो सलरनाय थाम्पुई दङ आल्का भाइरास ओ बेरामनो तुबै फायो आदिस इजिप्सि भाइरास गोनां थाम्पुई बाय वारजाक बरकनि साखनि ताय खरकसा बरक गाहामनो वारखे बेराम सलो भाइरास गोनां थाम्पुई बाय वारजाकमा बायनो चिकुनगुनिया बेराम मानजागो आहायनो थान्जा तंलायमा बाय कक सालायमा बाय याक रमलायमा बाय अम्मो सलया चिकुनगुनिया मानजाकजाक बरकनि साखनि थै बुइनो रैमानिया बुइनो थै रेखे सलै थांनाय चिकुनगुनिया बेरामनि भाइरासनो तुबुनाय थाम्पुइ बाय वारजाकमानि सालब्रै सालसिनिनि उलो अ बेमुकनि तमुंसि जागो अ बेराम मानजाखे आदमसा बेलाय लुमनाय ताय गोबो गोलैनाय बेलायखे बखरक सानाय कंग्राय मानजाकनाय गोपायो गोपायो हायाखेबा गोपानाय जरा तायासको रुवायनाय सानाय कलम 104 डिग्री कासानाय थै अंखरनाय मकलो इनफेक्सन हायाखेबा गाहामखे नुगिया ओंनाय जरा सामानि ताय रुवायमानि तालनै ताल थाम्फानो दङैमानो ताय बेलाय साखे थैयामो फानो गलाय दंनाय अ बेराम मादे मानजाक सायमानना हानखे थैनि एन्टिजेन एबा एन्टिबडि आमजुगैमा नायनाय चिकुनगुनिया बेराम मानजाकमा लगि लगिनो डाक्टारमा नायजाकनाय मानजाकमा लगि लगि नायजाकियाखे ताइबो किरमै सिन्चा कतर ओङैमानो अ बेरामनि बागै टिका ताबुकबो गोरिख बाहायखे चिकुनगुनिया मानजाकियाय दंनाय चिकुनगुनिया मानजाकियाय दंना हानखे थाम्पुइ वारजाकियाय दंनानिनो कायसा लामा आबुनि बागैनो सिनि नगानाय गिनिनि बलं रग हगुइ नगानाव दैगोसारियावै तना नांनाय ताय गुन्दा सोंगै थुना नांनाय वादिनि दै गोजावैदा दं आबरग बेबागनो मानायनाय सालो थुप्रुबो गुन्दा सोंगै थखे ताइबो गाहाम ओंनाय मर्टिन कयल ताय थाम्पुइ खारजाकनाय बिथिमा सारनाय नगनि ताइलामो नेट रुदि थाम्पुइ कासुना बागै नगो चिकुनगुनिया बेमुक मानजाकजाक तंखे बनगुन्दा बिसिंग तन्दि अमहायरक ख्लाय तंखे डेंगि मेलेरिया ताय चिकुनगुनिया बेमुकनि याकनि काति मान्नाय
1: ককবুরুক অনুষ্ঠানে এতক্ষণ শুনলেন চিকুনগুনিয়া প্রসঙ্গে কিছু কথা। অনুষ্ঠানে এবারে শুনুন ককবুরুক লোকগীতি শিল্পী মঙ্গল শ্রী ত্রিপুরা।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए pmsuryaghar.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: हेलो हेलो। हाँ
1: हेलो।
0: हाँ आपका नाम?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। राधे राधे।
0: राधे राधे। केसरी सिंह राजपूत।
1: जी।
0: अच्छा, तो आज कौन सी गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी का नाम है बड़े घर की बेटी और गाने के बोले हैं तेरी पायल बदी जहां।
0: अच्छा, बड़े घर की बेटी।
1: जी।
0: ठीक है, आपके साथ और कौन कौन है?
1: राम बाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, लोकेन वर्मा जी,
0: ठीक
1: अभिलाष तेली जी, आशुतोष।

0: भेजिए।
1: दीदी कुछ दोस्तों को याद करना चाहेंगे।
0: ओके ओके हाँ हाँ
1: सुमन मोहरी जी हैं, प्रेम संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश तेली जी हैं, केशव सिंह राजपूत जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, विश्वजीत जी हैं, गोपाल महाजन जी, गुलजार जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, और आपको डेलीकेट रहेगा।
0: ठीक है ओके थैंक यू। सुनिए सुनिए।